तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार च ऐसा चल जाता एक दूसरे दे काम आना जिस काम दी जिदी जिन्नी समर्था होवे बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लैण देण करदा रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकदा जेड़ा कर सकदा ओनू जाके बेनती करा तू ए कर दे एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना ओ मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा कीता है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया होगा। महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउण दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउणी है तू वाहगुरू नाल पा के वे मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है करता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथों कुछ भी नहीं हो सकता जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास च खड़े हो जाना ही रब दा काम है ओदे काम लगन दा मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे विच और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यो जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने हथ जुड़ जाण दा मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं यह हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना यह हथ बज गए यह हथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना किसी दूसरे का अभिवादन करना होवे आदर करना होवे ता भी हथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मत्था टेक देने एदे पिछे भी दो गोज भाव ने एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जा मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने च बड़िया भुला ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हुआ अर्ज कर रहा हुआ मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है ए वखरी गल है मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहिंदा ते इहदे वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै अपनी भगती नाल मेरी लिव एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास च लगा होवांगा हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु दा होर कोई काम साथों थुड़िया नहीं पिया वाहिगुरु दा कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा है साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा है ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता एक तां हुंदा ना काम हो जाणा काम कर लैणा काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तां करन तो पहला ही थड़कदा हुंदा घबराया हुंदा डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंभ के बह जांदा पसीने पूंजदा है सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुकर करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा है लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कार्ज सवारदा वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी मान हुंदा सत्कार हुंदा उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी
ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ, ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ

साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दा जिन्हां ने यह हुक्म सुनिया नंदेड़ सचखंड साहिब पातशाह दी हजूरी विच सदके जदो तख्त चवर दे मालिक साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब नूं थापिया गया इत्थे प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा ते हुक्म दे अंदर बड़ा फर्क है। प्रेरणा किसे नूं कीती जाए वह प्रेरिया जाए ना प्रेरिया जाए उहदी मर्जी। जदों हुक्म किसे नूं सुनाया जाए जां तां हुक्म मन के प्रवान हो जाऊ ते जां हुक्म अदूली करके गुनाहगारां दी कैटागरी शामिल हो जाए। हुक्म दा अर्थ दूजा नहीं निकलदा है, या वह मनिया जांदा है ते जां उसकी अवज्ञा हुंदी है। अवज्ञा करन वाले नूं जो सजा हुंदी है यह सारा संसार जानदा। हुक्म लॉ एंड आर्डर नूं कोई ना मन्ने ता जो उसका हशर हुंदा है, जो उसका वर्तारा वरदा है, किसी भी अज्ञानी तो अज्ञानी पुरुष तो भी भुला नहीं। कलगीधर पातशाह का यह हुक्म है, सब सीखन को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। यह हुक्म कलगीधर का सुन के ओ कहा वाला कोई गुरु का सिख किसी

0: तेरा ठा भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है, एक गल दा ख्याल रखना। मालक दा दर केड़ा है, सो दर केहा सो कर केहा, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन लहे। ओ केड़ा दर है जिथे भी साध जन बैठ के उन्हूं चेते करदे ने उथे।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani 24 hours a day from around the world.

चाहता ते है तू परमात्मा दे नाल मिला, पर किवें तेरा मिलाप परमात्मा दे नाल होवे। जेड़े गुण परमात्मा चाहुंदा है वो ता तेरे विच नहीं हन, क्योंकि चंगा इंसान किसे

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेन अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परे तकना के परमात्मा रूप

गुणवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

मेरे जीवड़िया परदेसिया कि पवे जंजाले राम कि तू पवे जंजाले राम सच सहम मन वसे कि पासे जंजाले राम बोले सेख फरीद प्यारे अल्लू लगे

एतल होती खाक में मारी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गौर करे आज मिला शेख फरीदा तातम कुंजड़िया आज मिला शेख फरीदा तातम कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी दुनिया।

गगा गोगन कुंद्रवो सास सास जपनीत कांब सासा देता बिल मना करियो मीत मैं

चलने चलना हार बिचारा ले मनो चलने चलना हार बिचारा ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठिनो जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए

छिल छिल और बेहात है, फूटे कर जो पानी सो दिन आवन लागा, सो दिन आवन लागा।

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछ न सूझे कर कबीर सुमरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी छोड़।

ताड़े रे जासी रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिधासी कावे से कुसाई खां सबे उठ जासी।

कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाई खुलिया कर्म कृपा पै ठाकुर कीर्तन हर हर गाई हर दिन रैन कीर्तन गाई है। गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज

कीर्तन हर हर गाई। कीर्तन ने ऐसा रंग चाढ़े कर्म खुल गया, कर्म जाग पे। किसे बंदे नू मालिक दी महान बख्शिश होवे ते असी कह देने भाई ये भागशाली है, ये कर्मा वाला है। गरीब गुरु महाराज पातशाह कहंदे ने कर्म जागे, कर्म खुलिया। पर खुलिया किवें? मालिक दा कीर्तन गाउण नाल।

बाबा फरीद जी ने मनुख नू समय दी कदर करन वास्ते प्रेरणा की थी। सतगुरु कहंदे ने सारियां जूनां दा सरताज बना के मैं तैनू संसार विच भेजिया। आम बात है कि जेड़ा वड्डा होवे ओदी जिम्मेवारी भी वड्डी हुंदी, वड्डे दी जिम्मेवारी भी वड्डी। साहब कहंदे ने इस धरती में तेरी सिकदारी, वड्डे वड्डे शीं बघेले नथां पाई फिरदा इंसान, बड़े बड़े जरीले नाग पटारियां विच बंद करी फिरदा। सतगुरु कहंदे ने पर तेरा कोई फर्ज भी है, तैनू नाम जपण वास्ते भेजिया संसार विच। गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, ए समा है तेरे नाम जपण दा। तां बाबा फरीद ने चेतावनी दित्ती, हे भाई जदों दरिया विच थोड़ा थोड़ा पानी होवे ओदू तां बेड़ा तैयार कर लै ताकि समय नाल तू पार लंघ सके, ते जदों दरिया विच तो ग्यानी आ गई, तूफान आ गया, दरिया ठाठा मारदा होवेगा, उस वेले मित्रा पार नहीं लग्या जाना, फिर तां डुबण दी गल ही है। इस करके कृपा कर, नाम जप, नाम दा बेड़ा तैयार कर ताकि समय नाल तू भव सागर तर सके। गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी विच बाबा फरीद जी प्रेरणा दे रहे ने, ते सानू चेतावनी कर रहे ने, भाई समय दी

तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू ही जाने और ना दूजा जाने। जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे आ भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

पता नहीं से कि इस तरह परमेश्वर दा सदा आ जाएगा। साहब जी कहंदे ने इंसान हर काम महूरत देख के करदा। घर बनाना होवे घर बन जावे, ग्रह प्रवेश करना होवे जां कोई ब्याह होवे, कोई भी खुशी दा काम होवे ता इंसान सारियां तो पहला दिन देखदा है, तारीख देखदा है, महीना देखदा है, साल देखदा है, मुहूर्त देखदा है। ए काम इस महीने इस तारीख नू करना है, इस वेले करना है, ताकि सारियां नू बुला लवां, किधरे कोई नाराज ना हो जावे कि मैनू नहीं बुलाया। गुरु साहिब जी कहंदे ने ऐ इंसान तू हर काम महूरत ते कीता, दिन देख के कीता, साल देख के कीता, पर मरण लगिया तू कोई महूरत ना देखिया, कोई तारीख ना देखी, ए ना सोचिया इस दिन इस तारीख नू इस महीने इस मुहूर्त नू मरा सारियां नू दस दिया ताकि कोई नाराज ना हो जाए कि मैनू नहीं बुलाया। साहब जी कहंदे ने ऐ इंसान हर काम तू महूरत दे कर सकदा है, पर जड़ी मौत है ए महूरत नहीं देखण देंदी। मरण ना मूरत पुछया, पुछी थित ना वार, मौत ने ना दिन देखण देता, ना तरीक देखण दीती, ना कोई महीना देखण देता। बस इन्ना ही पता लगा चंगा भला सारे परिवार नूं मिल के घरों तुरिया कि मैं चलदा आ जावांगा वापस। घरों ते तुर पिया, परिवार नूं मिल के बड़ा खुश है, पर की पता सी कि जांदियां जांदियां रस्ते विच ही परमेश्वर दा हुक्म आ जाना। घर वाले कारू डीकते पए ने, आ जाणगे शाम नूं, मेल हो जाएगा, पर क्या पता सी उस तां वापस नहीं आना, पर उहदी मौत दा सुनेहा जरूर आ गया। रस्ते विच जांदे हैं हुक्म आ गया परमेश्वर दा, आया हुक्म पार ब्रह्म का, उस अल्लाह उस पार ब्रह्म दा हुक्म आ गया। जांदियां जांदियां रस्ते विच ही हुक्म आया, मौत हो गई। साहिब जी कहंदे ने बड़ा कुछ बनाया, हाली मन दे चाह भी पूरे ना होए, पर जद हुक्म आया तां छोड़ चलिया। एक दिहाड़े जो कुछ बनाया सी सारा कुछ एक दिन छड़ के तुर पिया, ना पत्नी दा ख्याल, ना बच्चियां दा, ना रिश्तेदारां दा, ना सजना मित्रां दा, कि आखरी वेले किसे नू मिल ही लवां। नहीं, परमेश्वर दा हुक्म बड़ा डाढ़ा है, जद उहदा हुक्म आवे फिर किसे नू मिलण दा समा नहीं मिलदा। हुक्म बड़ा डाढ़ा है, आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। हुक्म आया और एक दिन सब कुछ छड़ के इस दुनिया तू अपने प्यारियां नू रोंदा कुरलांदा छड़ के तुर पिया।

राज मिलक जोबन ग्रह शोभा रूपवंत जवानी जान वाला सब कुछ छड़ गया राज भाग जोबन जवानी ग्रह कहते ने कारण अपना कार शोभा सोना रूप सारा कुछ छड़ के एक दिन तुर पिया बहुत दर्ब हस्ती यार कोड़े लाल लाख बयानी हाथी कोड़े समय दी सवारी हर चीज एक दिन छड़ के जो बड़े चाह नाल बनाई एक दिन तुर पिया।

बंके कहंदे ने पति नूं, जिन्ना दे पति मर गए, जिन्ना वापस नहीं आना, उन्हां औरतां दे बारे साहिब जी कहंदे ने तिन क्यों रहण विहाणी, उन्हां दीआं रातां हुण किवें बीतन, क्यों औलाद किन्नी भी नेक होवे, रिश्तेदार किन्ने भी चंगे होण, पर पति दी थां कोई नहीं लै सकदा। साहिब जी बाणी विच बयान करदे ने ਉਹ ਪਤਨੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

कदी हसो ना, क्यों? मौत एक सच्चाई है, जीवन झूठ है। असी लोग मौत नू भुला देने हैं, पर मौत इंसान नू कदी नहीं भुलदी। समय नाल ओ आके ले जांदी, क्योंकि ओदा हुक्म बड़ा डर है। पति ना रवे ते औरत दा जीवन कहो जे है, तां गुरु नानक साहब बाणी विच बयान करदे ने। औरत दे दर्द नू समझिया, अपने आप नू फिर कहन लगे, ऐ परमेश्वर, ऐ अकाल पुरख, तू मेरा पति है। जिवें औरत दा जीवन पति तो बगैर कुछ नहीं, तू मेरा पति है, तेरे बगैर मेरा जीवन

सुंदर अखाड़े रण में जिते पवाड़े। हर इंसान यह चाहता है कि मैं किसे ना किसे ते हुक्म चलावां, मेरी हुकूमत होवे, दुनिया मैनू सलाम करे। इंसान लड़ाइयां जितदा है, तरक्कियां करदा है, बड़ा कुछ बना भी लैंदा है, ए भी कहंदा है हों मारो हों बंदो छोड़ो, मुख ते एव बबाड़े। मुख कहंदे ने मोह नूं, मोह तूं ए भी कहंदा है मैं जिन्हों चाहवां उन्हों मार सकदा, जिन्हों चाहवां उन्हों छड़ सकदा। पर साहिब जी कहंदे ने दुनिया ते हुक्म चलाण वाला कल दी सलाह करके सौंदा है,

अपने परिवार के नाल अमृतसर साहब तो चले गोइंदवाल साहब पहुंचे। शाम जदों पहुंचे हुक्म कीता जाओ भाई इशनान करो आराम करो, असा सवेरे शरीर त्यागना है। पर किन्नू आराम चंगा लगता है, किन्नू नींदर आंदी है। आज दी रात बीत गई, अमृत वेला होया, सतगुरां इशनान कीता है, अपने आसन ते बैठ गए ने। चार सवेरे संगत बैठी है, हाथ जोड़ के अखां विच अथरू ने। गुरु रामदास जी दे सुपत्नी माता पानी हाथ जोड़ के कहन लगी, मैनू भी नाल लै चलो, तुहाडे पिछे रह के हुण मैं की करना है। गुरु रामदास जी कहन लगे, भाई जीवन ते मौत परमेश्वर दे हाथ है, जीवन ओ देंदा है, जीवन लैंदा भी ओ है। इस शरीर नूं गवाण दा किसे नूं कोई हुक्म नहीं, ओदा हक नहीं बनदा। समा साडा आया है, असां ज्योति ज्योत समाना है, पर तुसां हाली बड़े काम करने। फिर प्यार भरी एक निगाह अपने सुपुत्र गुरु अर्जन साहब वाल देखिया, एक निगाह सारी संगत वाल देखिया, फिर अखां बंद कर लईयां। देखण वालियां नूं इस तरह जापदा है, हुणे अखां खुलण गईयां, हुणे कुछ कहणगे, हुणे बुल हिलणगे, कोई अमृत बचन सुनाणगे। पर समा ओ आ गया, ज्यों जल में जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। धन गुरु रामदास ज्योति ज्योत समा गए ने, पर उपदेश कर गए किसी ने रोना नहीं, क्योंकि रोण दा लाभ कोई नहीं। मत मैं पिछे कोई रोग सी, सो मैं मूल ना पाया। रोना नहीं, परमेश्वर दा कीर्तन करना है, सिमरन करना है, ताकि सिमरन सदका विछड़ी रूह नूं परमेश्वर अल्लाह दे चरणा विच जगह मिले। ए उपदेश कर गए ने, भाई अगर कोई विछड़ जाए दुनिया ना त्यागना, विराग विच पै के अपना शरीर ना गवा लेना, दुनिया विच रहना, दुनिया नूं नाशवान समझना है। दुनिया दे काम भी सारे करने ने, पर नाशवान समझ के किसे दा बुरा नहीं करना, किस ना ठगी नहीं करनी, जीवन उच्चा ते सुच्चा बताना है। गुरु साहिब जी कहंदे ने, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आया नांगो जासी, ज्यों हस्ती खाक शाने, संत सज्जन सुनो सब मीता, झूठाए पसारा, मेरी मेरी कर कर डूबे, खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा, एक नाम ने निस्तारा करना है। अज दा कीर्तन आपां सुन के अपने मना विच धारिए, एक दिन मरना है, ताकि जीवन सफला करके जाइए।

जितने माई भाई बैठे हो सारे प्यार नाल रसना पवित्र करया करो। पोथियां सामने रखण दा एहो एक फायदा है, इंसान चंगी तरह बोल सकदा है। इसलिए सारे प्यार नाल करीबन सारी संगत ही पोथियां रखदी है, फिर पढ़दे क्यों नहीं? पढ़ो सारे, कोई रसना खाली ना रवे। आओ साहेब पंचम पातशाह जी दियां कैसियां ये प्यारियां तुकां ने, पढ़ो सारे।

जी दी महान पवित्र बाणी दा है। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़ा सुंदर ते पवित्र शब्द उन्होंने ये लिखिया है। साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह जी दी महान पवित्र बख्शिश नाल उन्होंने उपदेश दिता है कि हे संसार दे लोगो, मैं सिमरन करदा हां, भगती करदा हां, बंदगी करदा हां, पर लोग मेरे नाल किदां दा सलूक करदे ने। मैनू कहंदे ने ये पागल, ये दीवाना है, ये बौरा है, पर मैं तां समझदा उस मालिक दी मेरे ते नजरे रहमत होई, ओदी बख्शिश होई, ओदी महान कृपा नाल मैं बौरा होया हां। पर मैं बौरा जरूर हो गया, पर वेख्यो होर ना कोई हो जाए, पर मैं कला नहीं होया, मेरे नाल होर भी कई होए ने। मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा, कौन कौन बिगड़े ने, गंगा के संग सलता बिगड़ी। गंगा हिंदुस्तान दा महान तीर्थ मनिया गया। गंगा दे किनारे ते बह के ऋषियां मुनिया तपियां ने तप कीता, अपने जीवन नू सुचजा बनाया। गंगा हिंदुस्तान दा महान तीर्थ है। हिंदू लोग गंगा दा पानी बड़ा पवित्र समझ के अपने घरां विच रखदे। गंगा मैया भी किया जांदा है। ता गंगा दे लागे एक सलता नदी है, ओ अगे जाके गंगा विच मिक्स हो गई। ता कबीर जी ने उदाहरण दिती, कहंदे ने मैं कल्ला थोड़ा विगड़िया, गंगा दे नाल लग के सलता भी विगड़ गई। ऐसी विगड़ी गंगा ही बन गई।

सही महीनिया च बौरा कौन है, दीवाना कौन है, तो दीवाना जानिए जा साहेब तरे प्यार। अगली तो प्यार ना सुनना, साहब कहंदे ने मंदा

कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के भवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहिंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

बुद्ध सो दीपक जू जियारे, ज्ञाने की बढ़नी मनो हाथ ले। शत्रु कहंदे ने ज्ञान दा झाड़ू मन दे हाथ विच पकड़ लै, ते अपने अंदरों ईरखा द्वैत चुगली निंदा बखीली ए सारी हूंज के बाहर कढ़ दे, ताके तेरे हिरदे च टिक जावे सतनाम श्री वाहे गुरु।

पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां बुरियां।